0: डॉक्टर साहब ने कहा है कि कल शाम तुम्हारी पट्टी खुलने वाली है।
1: सच?
0: हाँ। और उससे पहले मुझे अपने दुल्हन के स्वागत की तैयारी करनी है।
1: क्या मतलब तुम मुझे छोड़कर कहीं जा रहे हो बाबू?
0: थोड़ी देर के लिए बस, चरण के साथ जा रहा हूँ।
1: जल्दी आना।
0: वापस आने के लिए तो जा रहा हूँ।